करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनहना। कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो, चूक होए काबले हो सुधारो। कबे बाच दोहरा जो निज

करहु सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संता अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा।

सब विसारणा अंगीकारो हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला सम्राथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सेवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कंडेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया

पंजवा अंतर गुरे आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगह पाइय ठाओ कहु नानक कृपा करे

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे सुकाहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहु कुरसहु चटी है तुद डिठे सचे पात साह माल जन्म जन्म दी कटी है।

नमस्ते न, ये अजान ही है पर मुरली दी तान भी बजदी पई है। धन धन ओ राम बहन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे। धन धन बन खंड बिंदरा बना, जय खेले श्री नारायण। धन धन तो माता देव की, जय ग्रह रमैये कमलापति। बेन बजावे गोधन चले, नामे का स्वामी आनंद करे। मुरली दी तान गूंजदी सी मंदरां च, मस्जिद दी अजान गूंजदी मस्जिदां विच। एक ऐसा घर गुरु नानक ने बनाया, मुरली दी तान भी गूंजदी है, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी है। इतनी सांझी वालता। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, जिहड़े विचार मनुख नू मनुख नाल तोड़दे ने, वो विचार मनुख नू खुदा नाल नहीं जोड़ सकदे। जिहड़े विचार मनुख नू मनुख तो दूर करदे ने, ये विचार मनुख नू परमात्मा दे नेड़े नहीं ले जाणगे। जिहड़े विचार बंदे नू बंदे तो दूर करदे ने, समझ लेना वह बंदा जिन्हां विचारां करके बंदे नू दूर कर रहा है, वह खुद भी रब तो दूर हो रहा है। इकबाल कहिंदा है, दो मनुख नहीं समझे गए, गौतम ते नानक। दोहां बारे तशरीह बड़ी सोहनी कीती उसने। कहिंदा है, एक दा दीवा ते झूठियां दी महफिल विच जलिया, एक दा दीवा अंधियां दी महफिल विच जलिया। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी। बारिशे रहमत हुई, पर जमी काबिल न थी। इकबाल गोष्ठी लिखदा है परवाने दी ते जुगनू दी। उपर जुगनू अपनी चमक दे रहा सी, ते थले दीवे दिते परवाना परकरमा पिया करदा सी पतंगा। शायर दा ख्याल, ते पता है शायर की होंदा है, कवि की होंदा है। ये जड़ा ऋषि लफ्ज़ है ना संस्कृत दा, इहदे अर्थ कवि ने। दो तरह के कवि आते हैं। एक ओ कवि जो पढ़ के सुन के स्टडी करके तुकबंदी करके अक्षरां नू जोड़ के शायरी पेश करते हैं। एक ओ ने जिन्हां दे अंदरों शायरी इंज निकलती है जिवें पहाड़ां दे सीने चीर के झरने निकलते हैं, बिल्कुल निर्मल जल। उन्हां नू ऋषि आख्या गया। गुरु नानक अपने आप नू शायर कहंदे ने, नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। जिहड़े तुकबंदी करदे ने, ये हौज दा पानी आउंदा दूजी थां तों इकट्ठा कीता गया, टंकी दा पानी। मैला भी हो सकदा, गंदा भी हो सकदा, ऐसे शायर कवियां दा चरित्र मलिन भी हो सकदा। पर ऋषि कवि ओ शायर जिवें पहाड़ां दे सीने चीर के झरने निकलते ने, एक गहरे बोल उन्हां दी अंतर आत्मा चो निकलते ने, उन्हां दा अनुभव हुंदा है। संतन की सुन साख साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो वेखदे ने कह देंदे ने, सिर्फ तुकबंदी नहीं कीती। इकबाल कुछ उन्हां ही शायरां दे चों है जो थोड़ा बहुत अनुभव रखता है। इस वास्ते शायर दी व्याख्या करदे आया वो कहिंदा है, मुबत लाए दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख। कहिंदा कन्ना च दर्द होवे अखां रोंदियां ने, दंदां च दर्द है अखां रोंदियां ने, मथा पीड़ है या शरीर दे किसे होर अंग दे दर्द है, जोड़ दुखदे ने रोंदियां ते अखां ने। शरीर दे सारे जड़े उजू ने इंद्रे, इन्हां दी पीड़ा अखां प्रगट करदियां। मुफ्त लाए दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख। किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। इकबाल कहिंदा शायर कवि ते अख हुंदा समाज दी संसार दी। वो अख हुंदा, किधरे भी पीड़ है किधरे भी कोई समस्या है उहदी अखां चो निकलदी, उहदी अखां चो प्रगट हुंदी है।
पतंगे ते परवाने दी गोष्ठी लिखी है इसने, बड़ी गहराइया नु छोया इसने। उपर जुगनू दे चमक ते थले दीवे दी चमक ते कर रहे है परवाना परकर्मा। परवाने ने ताना जनी की थी जुगनू ते। इकबाल इंज लिखता है, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। ऐ जुगनू तू मेरी दुनिया तो दूर है, परवाना इंज कह रहे है, क्योंकि तेरी अग दे च सोज नहीं है, तपश नहीं है। मैं जिस दीवे दी परिक्रमा कर रहे हैं, ये सोज है, ये तपश है, ये सेक है, और तेरी अग ठंडी अग है। भावे चमक है तेरे को, भावे तू भी रोशनी दा आशिक है, पर तेरी रोशनी ठंडी है, तेरी अग ठंडी है, ओदे तपश नहीं है। इस वास्ते जिथे मैं पहुंचे हैं उथे तू नहीं है। परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। अगों फिर जुगनू बोलिया, इकबाल लिख देना है, फिर जुगनू परवाने नु समझांदा है। जुगनू कहिंदा है, अल्लाह का शुक्र है कि परवाना नहीं मैं, दरयूजा गर आतिश बेगाना नहीं मैं। ठीक है मेरी अग ठंडी सही, पर है ते अपनी, मैं अपनी अग च मस्त हां, तू ते दूजियां दे दीवियां ते सड़दा फिरदा है, तू ते पराई तात लई फिरदा है, तू ते पराए साड़े लई फिरदा है, तू ते दूजियां दे दीवियां ते जलदा फिरदा, असी अपनी अग दे च मस्त। खूब चोट कीती है इस शायर ने, बहुत सारे लोग दूजियां दे दीवियां ते सड़दे रहिंदे, पराई अग चुक्की कर देना। ते महाराज कहिंदे जिस दे अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला। भुल के भी उस मनुख का भला नहीं हो सकता, किसदा, जो अपने अंदर पराई तात रखदा है। मैं एक दोहा फिर दोहरावां, जिस दे अंदर पराए साड़े होणगे, उहदी सोचनी की होवेगी, मेरे सिर ते भावें पग रवे भावें ना रवे, दूजे दी लैणी चाहीदी। मेरा घर बने भावें ना बने, दूजे दा टहना चाहीदा। मेरे घर मुंडा होवे भावें ना होवे, दूजे दा मरना चाहीदा। मैनू इज्जत मिले भावें ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहीदी। मेरा नफा होवे भावें ना होवे, दूजे दा नुकसान ते होना ही चाहीदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, ऐसा मनुख अपने लिए खुद दोजक बनांदा है, अपने लिए खुद नरक बनांदा है। सतगुरु कहंदे ने हिरदे च सारियां लिए भलाई दा जज्बा पैदा होया। मेरे ख्याल रूए जमीन ते इक्को एक स्थान है गुरु नानक दा घर, जिथे सारियां दे भले दी अरदास कीती जांदी है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद हद हो गई। एक ही मंदिर है इस तरह का, रूहे जमीन थे। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई, सबको मीत हम आपन कीना। सारे मेरे मित्र ने हुण मैं अर्ज करा, रामायण दे करता श्री राम दे महान भगत तुलसी, वो कहिंदे ने मित्रता ते उत्थे हो सकदी जिथे छे गुण आपस दे च मेल खान, उंज नहीं हो सकदी। गुरु अंगद देव जी दा एक बड़ा कीमती श्लोक है, नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोसों न्यो, पाणी अंदर लीक द्यो तिसदा थाउ न थे। दोस्ती बराबरी दे तल ते आउंदी है, मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है। 70 साल दा बुढ़ा ते 5 साल दा बच्चा दोस्ती नहीं हो सकदी। दादे दे पोतरे दा संबंध ते हो सकदा है मोह ममता दा, मित्रता नहीं होवेगी, दोस्ती नहीं होवेगी।
दोस्ती लई बराबरी दा दल चाहिदा है। मित्रता हमेशा बराबरी दे तल दे हुंदी। नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोस। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। एक पांच साल दे बच्चे दी 80 साल दे बुड्ढे नाल की खाक दोस्ती होवेगी, किस तरह होवेगी? 70 साल दा बिरध 5 साल दे बच्चे नाल की दोस्ती पावेगा? मासूम बच्चा है, मां बाप उस नाल तुतला के बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जे तुतला के बोलता है ठीक ढंग नाल बोलता नहीं। बच्चे दे तल ते आके ही बच्चे नाल गल करनी पैंदी है, तां ही संबंध जुड़दे ने उंजने। गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे ने मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है, छोटे ते वड्डे दे च नहीं आउंदी, कमजोर ते ताकतवर दी दोस्ती नहीं आउंदी, मूर्ख ते स्याणे दी दोस्ती नहीं आउंदी, लोभी ते संतोखी दी दोस्ती नहीं आउंदी, क्रोधी ते शांतमई दी दोस्ती नहीं आउंदी। संबंध हो सकदे ने। दोस्ती लई बराबरी दा तल चाहिदा है। दो संतोखियां दी दोस्ती हो सकदी है, दो श्रद्धालुआं दी दोस्ती हो सकदी है, दो स्याणियां दी दोस्ती हो सकदी, एक मूर एक स्याणा, एक क्रोधी एक शांतमई, किस तरह दोस्ती होवेगी? दोस्ती लई मित्रता लई बराबरी दा तल चाहिदा है, लेकिन सारियां नूं अपना बनाना है। इहदे वास्ते नहीं, हुण बराबरी दा तल है भावें नहीं है, इह कोई गल नहीं। एक बच्चा बराबरी नहीं कर सकदा एक 60 साल दे बुजुर्ग दी, किस तरह बराबरी करेगा? शरीरक बल करके भी बराबर नहीं कर सकदा, दिमागी सोच करके भी नहीं कर सकदा। लेकिन फिर भी ममता दा माराया दादा कहिंदा मेरा अपना है, मेरा अपना है, उहदे नाल प्यार करदा है, मेरा अपना है। इह गल वखरी है, मित्रता दोस्ती बराबरी दे तल ते हुंदी है, पर अपणंत ते सारियां नाल कीती जा सकदी है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, सारियां दे नाल मैं अपणंत जोड़ लेंगे। कवि तुलसी रामायण दे करता कहिंदे ने मित्रता उत्थे ही आउंदी है जिथे छें गुण आपस दे च मेल खा जान। मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया सी, और वाकई बहुत सूझमान ने तुलसी, बड़ियां गहरियां गल्लां उन्होंने किधरे किधरे लिखियां ने। वो कहिंदे ने आसा इष्ट उपासना खान पान पहरान खट लखन प्रगटे जहां तह मित्रता जान। छे गल्लां आपस विच मेल खानियां छन। इच्छा, एक भरा दी इच्छा कुछ होर है, दूजे दी इच्छा कुछ होर है, इच्छावां टकरा जाणगियां, इच्छा टकरा जाएगी, विरोधी इच्छावां एक नहीं होण देणगे। मेरी इच्छा कुछ होर है, दूसरे दी इच्छा कुछ होर है, विपरीत इच्छा है, क्योंकि विपरीत इच्छा है, मुखालफ इच्छा है, ये दूरी कर देगी। तुलसी कहिंदा है इच्छा एक होवे, आसा इष्ट, इष्ट भी एक होवे। सारी दुनिया विच किसे दा कोई इष्ट? कौम ते इको है, साडे हिंदू वीर इको ने, पर सारियां दा इष्ट एक नहीं है। किसे दा शिवजी, किसे दा ब्रह्मा, किसे दा विष्णु, किसे दा राम, किसे दा कृष्ण, किसे दा महाकाली, कोई देव समाजी है, कोई आर्य समाजी है, एको ही कौम है, इष्ट अलग अलग ने। दूर क्यों जाओ, तुलसी दे इष्ट श्री राम ने। ये जद मथुरा दे चाहे कथा करन लई, उन्हां दिन च कथा करदे सन चल फिर के। मथुरा दे चाहे अद्धा शहर इकट्ठा होया, मूर्ति श्री कृष्ण दी सी, तुलसी ने मत्था नहीं टेकया। वो खुद लिखदे ने, उन्हां दी खुद दी लिखत ना आउंदी ते मैनूं कहण दी जरूरत नहीं सी। आखिर तार्किक लोगां ने कहा तुसी इतने वड्डे भगत, इतने वड्डे ज्ञानी, इतने वड्डे लेखक कवि, तुसी मत्था क्यों नहीं टेकया? तुसी खेर सिर क्यों नहीं झुकाया? तो कवि सन कविता च दसदे ने, कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनुष बाण होए हाथ। मैं धनुषधारी दा पुजारी हां, मुरलीधर दा पुजारी नहीं।
हां मुरली दी थां ते धनुष बाण दे दो तो मैं झुकदा, उंज नहीं झुकांगा। तुलसी कोई मामूली पद्धर दा मनुख नहीं है, रामायण दा करता है। कोई मामूली इंसान नहीं, भारत दे चोटी दे विद्वाना च गिणिया जांदा है। कोई आम पद्धर दा मनुख नहीं, चोटी दे भगतां दे शुमार होंदा है। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने वे जो धनुष बाण होए आथ। तो तुलसी कहिंदे ने मित्रता उत्थे होंदी है इष्ट इक होवे, ए नहीं मेरा इष्ट कुछ होर है दूजे दा इष्ट कुछ होर है, मित्रता नहीं होवेगी। मेरी इच्छा कुछ होर है दूजे दी इच्छा कुछ होर है, नेड़ता नहीं होवेगी। इच्छावां टकरा जाणगियां, इष्ट टकरा जाणगे। आसा इष्ट उपासना, तुलसी कहिंदा उपासना दा ढंग भी इक होवे, ए नहीं कोई पूजा पाठ करे ते कोई नमाज पढ़े, कोई जप करे ते कोई तप करे, कोई प्राणायाम करे कोई योग साधना साधे, कोई रेचक कुंभक करे कोई नेती धोती दी क्रिया साधे। कहिंदा नहीं, उपासना दा ढंग भी इक होवे। दूजा नमाज पिया पढ़दा एक पूजा पिया करदा, तुलसी कहिंदे ने मित्रता नहीं होवेगी। उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आसा इष्ट उपासना, खान पान पैरान ते खाने विच भी सहमति हो गए। खाना हर धर्म ने कुछ खाने नू वर्जित गिणे, ए ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत विच ऐसे भी ने जो दूध भी नहीं पींदे, कहिंदे ने इह लिक्विड मास है, इह सॉलिड मास नहीं है लिक्विड मास है, इह लाल मास नहीं है चिट्टा मास है, नहीं पींदे। परहेज करदे ने, वो नहीं पींदे। और बेशतर उसनू अमृत मनदे ने दूध नू। गुरबाणी कहंदी है पशु मिले चंगियाईयां खड़खावे अमृत दे, अमृत देंदियां ने गऊआं मज्जां। पर वो कहंदे नहीं, ये लिक्विड मास है तरल मास है। एक ठोस मास होंदा एक तरल मास है, कहंदे तरल मास है। आखिर मास दा निचोड़ है और की है, नहीं पींदे। बड़ा परहेज करदे ने। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहंदा खाण दे च भी सहमति होवे, ये नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत देंदा इस खाने नो, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान। मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च देच भी शराब पी लेंदे ने। उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड दा एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभा दे आंदे ने। क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए वे 10-15 मिनट आके बोलिया, ते मैं उन्हां नू कहा मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है। कहण लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दे च रहा होना, अंग्रेजां दे राज दे समय बुजुर्ग है। कहिंदा मैनू हिंदी आउंदी होर बथेरियां नू आउंदी, तुसीं उर्दू च बोलना हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है, कम चल जाएगा। ये खुले सुभा दे आउंदे ने। इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है करदे ने। पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, हद हो गई। इस्लाम हराम कहिंदा है, गुरबाणी कहिंदी है जिस जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहिंदा खाने विच भी सहमति होवे पीण विच भी सहमति होवे, ए नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मास है नहीं पीना। एक मास खाईदा एक मास पीना है, मास पीना भी है मास खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनन देच भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। ये छे गल्लां आपस देच मेल खान ते मित्रता हो सकती है वरना नहीं।
तुलसी दे इस सलोक दे मुताबक ते ए मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया दा खाना इस एक किस तरह करिए, भारत दा खाना ही एक नहीं है। बंगाली कुछ और खांदे ने, असामी कुछ और खांदे ने, पंजाबियां दा होर खाना है, कश्मीरियां दा होर है, गुजरातियां दा होर है। पिछले दिन ही जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया से, ते दास दी सेवा श्रोमणी कमेटी दी तरफों सारे भारत दे वड्डे वड्डे शहर खास करके सूबियां दी जेहदे राजधानियां सन उन्हां दी सी। जथेदार साहब भी नाल सन, चार पंज जथे और चार पंज विद्वान पहुंचे सी गांधी धाम गुजरात दे। उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी एक गुजराती सज्जन ने, भी लंगर मैं बनाना, मैनू इजाजत दो। तो सिंह सभा ने मंग लिया, ठीक है, श्रद्धा नाल कहिंदा पिया ते चलो ये बनावे। तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान की समाप्ति हुई, पंगतां लगियां, अखीर दे जाके दास बैठा सी नाल होर साथी। साग सब्जियां जिहड़ियां अगे रखियां गईयां ना, दाल मिठी सी। मैं कि हद हो गई, इन्हां कोल लूण दी थां ते चीनी पै गई। मैनू उत्थों दे सिकत्तर साहब कहण लगे, नहीं गहनी जी, ये दाल दे च मिठा ही पाउंदे ने, गुड़ पाउंदे ने, हुण कोई होर सूबा नहीं पाउंदा, ये पाउंदे ने। ये ते दाल भी मिठी बनाउंदे ने, नमक भी पाणगे रज के, गुड़ भी पा छड्डदे ने। सारे भारत का खाना एक नहीं है। गुजरातियां का खाना कुछ होर है, मराठे कुछ होर खाते, तमिल कुछ होर खाते, कन्नड़ कुछ होर खाते, तेलुगु कुछ होर खाते, राजस्थानियां का खाना कुछ होर है। पहले तो सारे भारत का खाना एक नहीं है, सारी दुनिया का खाना एक किवें करांगे? फिर सारी दुनिया दी इच्छावां, घर के चार बच्चे होंगे, उनकी मुख्तलिफ राय होंगी है, वख वख इच्छा होंगी है। खाण दी सहमति, पीण दी सहमति, इच्छा एक। गुरु नानक ने एक नुकता बयान किया, मुख्तसर मैं थोड़े सामने रखा। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। इष्ट एक होना चाहिए, कोई गल नहीं। खाना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा भी एक नहीं है कोई गल नहीं, वक वक इच्छा है भी चलेगा। उपासना का ढंग अगर एक नहीं है कोई गल नहीं, नमाज भी चलेगी, पूजा पाठ भी चलेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोल मैं थोड़े सामने रखा। सतगुरु कहते ने, काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू घट समझिया गया, घट बयान किया गया, इस वास्ते बड़े भारी मुगलते ने। सतगुरु कहते ने, काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, कहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही हिंदू है। गुफा दे च बैठ के गायत्री दे मंत्रा दा जप पिया करदा, तू ही कर रहे हैं, ये तू ही है। पर कहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो, किधरे तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है। मुनारे से चढ़ के बांग दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, पर तू ही है। इतनी समदृष्टि गुरु गोविंद सिंह जी की। कहूं हुए के हिंदू आ गायत्री को गुपद जप्यो, कहूं हुए के तुरका पुकारे बांग दे तो। कहूं को बकाव होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान ले तो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, वेदां दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है। सारी कुरान तेनू हिफज है, ए पुराणा दे ज्ञाता, ए कुरान दे हाफिज, प्रभु तू ही है। इतनी समदृष्टि, कोई गल नहीं। कोई कुरान पढ़ता है तो ठीक है, कोई नमाज पढ़ता है तो ठीक है, कोई पूजा पाठ करता है तो ठीक है। सतगुरु कहते ने, इष्ट एक होना चाहिए, एक इष्ट खुदा परमात्मा अकाल पुरख, नाम उसके अलग होवन। नामा ते भी मनुख लड़ पेंदे ने। मैं देखना यह जिहड़ा सूरज है, यदा एक नाम नहीं है। इन्हों संस्कृत दे भान कहिंदे ने, रवि कहिंदे ने, सूरज कहिंदे ने, फिर इसनों परशियन दे आफताब कहिंदे ने, खुर्शीद कहिंदे ने, इन्हों इंग्लिश दे सन कहे जांदे ने। और झगड़ा इस गल का नहीं, तू खुर्शीद क्यों कह रहे हैं, रवि आख।
तू रवि क्यों कह रहे हैं, सूरज आख, सारे नाम सूरज दे, और सूरज दे नाम करके झगड़ा नहीं है। पर जिहड़ा महा सूरज परमात्मा है, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने महाचानन, जो हजारां सूरजां नूं जन्म देने वाला है, कई कोट ससियर सूर निकत्र करोड़ां सूरजां नूं जन्म देने वाला है, वह महासूरज उहदे अगर बहुत सारे नाम आवन ते झगड़ा, अल्लाह ते राम दा झगड़ा। गुरु नानक कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, ए प्रभु मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने, कुर्बान जाना। इस तरह का घर एको ही मिलेगा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम है कुर्बान जाने। खाना एक नहीं तो कोई गल नहीं, इसते की झगड़ा करना। पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा एक नहीं है तो कोई गल नहीं। प्यो पुत्र की इच्छा भी अलग अलग होंदी है, दो विरावां दी भी इच्छावां मुख्तलिफ हो जांदियां, सारे संसार की इच्छा एक किवें करांगे। उपासना का ढंग एक नहीं है कोई गल नहीं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्राणायाम की साधना कर रहा है, कोई नेती धोती कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गल नहीं है। अगर उपासना का ढंग एक नहीं है तां भी चलेगा। महाराज कहंदे ने एक गल नहीं चलेगी, इष्ट एक होना चाहिए, ओही एक परमात्मा, भावें उसनों खुदा आख लो, भावें उसनों राम आख लो, भावें उसनों वाहिगुरु आख लो, करतार आख लो, इष्ट एक चाहिए, फिर सारे ब्रह्मण विच एकता हो सकती है। और सारे उसे तो आए ने, उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिवें सागर एक है ते लहरां अनेक ने, सूरज एक है किरणा अनेक ने, परमात्मा एक है संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने। इस सारी अनेकता दा उस एक नाल संबंध जुड़े होया है, इस वास्ते सारियां ही लहरां भरा भरा ने, पहने भरा ने, सारे एक सागर दे च ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा है। मैं फिर लफ्ज़ दोहरावां, जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, ओह विचार मनुख नूं परमात्मा तों वी दूर करनगे। जेड़े विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, ए विचार बंदे नूं रब दे नेड़े वी नहीं जाण देणगे, दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए, सबको उम्मीद हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। करम उना दा ए, हरि मंदर साहब दी रचना सरोवर दिच कीती, सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर वसाण दी ते सरोवर नू बनाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी दी, कार्य आरंभ कीता गुरु रामदास जी ने। सरोवर विच हरिमंदर बनाया गुरु अर्जन देव जी ने, हिफाजत दा सारा इंतजाम कीता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, अकाल तख्त बना के। एक शहर विच गुरु नानक दे इतने स्वरूपां दी महिमा है, मेहनत है, ताही उसनों सिखी दा केंद्र गिणदे ने। लेकिन गजब दी गल, ऐसे हरि मंदर दी नहीं गुरु अर्जन देव जी मियां मीर तो रखवांदे ने। और मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रखदा, बस थोड़ा जिहा विखाद इत्थों ही शुरू हो गया, इत्थों ही शुरू हो गया। सता सत नाल टकरा गई, दो ताकतां होंदियां ने, एक बाहर दी एक अंदर दी। बाहर दी ताकत नूं कहिंदे ने सता, अंदर दी शक्ति नूं कहिंदे ने सत। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी कोशिश सी कि सता सतवादी दे हाथ च होवे, होई है पर बहुत थोड़े, कदी कदाई राजा जनक। उह सतवादी भी सी, सताधारी भी सी, उह संत भी सी ते राजा भी सी। राम नूं लै लईए, वक्त दे अवतारी पुरश ने, हिरदा संत वर्ग है पर राजे ने, हकूमत है। कृष्ण अवतार है, संत है, पर राजा है द्वारका दा, गुजरात दे छोटा जिहा इलाका,
द्वारका, ये द्वारका दे राजा सन, नाल छोटे जिया कुछ चार पांच या दस भी पिंड होने ने द्वारका, ये उत्थों दे महाराजा सन, राजनीति चलांदे सन, बाहर दी सत्ता भी कोल सी, अंदर दा सत भी कोल सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नारा लाया, अगर सत्ता सतवादी दे हाथ च नहीं होवेगी तो सत्ता जुलम करेगी, सत्ताधारी अपने पैरां तले मजलूमां नूं रौंदेगा लिताड़ेगा, सत्ता सतवादी दे हाथ च होवे, संत ही सिपाही होवे, सिपाही संत होवे, वो अंदरों अत्यंत कोमल होवे ताकि इंसाफ कर सके, वो अंदरों अत्यंत मिठास नाल भरिया होवे ताकि उहदे अंदर वितकरे ना होन, सदा सत नाल टकरा गई और आद काल तो टकरांदी रही। मिस्र दी सदा मंसूर नाल टकरा गई सी, इतना वड्डा फकीर विचारा सोली ते चढ़े, सरमद सूफी संत है, दिल्ली दियां गलियां दे नगन घूमदा सी, इनू पकड़ के औरंगजेब दे दरबार दे पेश कीता गया, नंगा क्यों घूमदा है, भावें उसने सीधा ही कह दिता सी औरंगजेब नूं, तू दस मैं केड़ी चीज नूं ढकां, तेनू मेरे विच क्रोध दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देंदा है, वासना दिखाई देंदी है, दुश्मनी दिखाई देंदी है, अगुणा नूं ढकना पैंदा, गुणा नूं ढकण दी लोड़ नहीं, गंदगी नूं ढकना पैंदा, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। और बड़ी करारी चोट कीती, तू कपड़ियां देच भी नंगा है, मैं नंगा भी ढकया होया, भावें तू बड़े कीमती कपड़े पाए ने पर भरावां दा कतल ते उन्हां दा खून तेरे कपड़ियां च भी बार आ रहे है, तू प्यो नूं जिहड़ा तड़पा तड़पा के मारिया है, ये जुलम तेरे कपड़ियां तो भी बाहर आ रहा है, इंसाफ दया प्रेम मेरी नग्नता तो भी प्रगट हो रहा है, मैं नंगा भी ढकया होया, तू ढकया होया भी नंगा है, पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दाद। दो नुकते थोड़े सामने रखा, ये रहिंदा सी जिथे अजकल दिल्ली दे गुरुद्वारा मजनू टिल्ला है, इस टिल्ले दे कोल इहदी निक्की जिही झुग्गी सी ते चारों पासे इसने वाड़ लाई हुई सी, उहदे च रहिंदा सी। शिकार खेड के एक दिन औरंगजेब वापस आ रहा है ते झुग्गी दे चों आवाज आ रही सी, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, हैरान होया, आवाज दे खिच बटी सी, दिल दी गहराई चो अगर वाहेगुरु शब्द निकले उहदे च कुछ कशिश होवेगी, एवें जबान कह रही है ठीक है, कन्ना तक जाएगा गहरा नहीं उतरेगा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाणा है, उहनूं अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां पैणगियां, जो दरख्त गहरा नहीं जा सकदा वह उच्चा भी नहीं उठ सकता, जिहड़ी गल गहरी नहीं आउंदी वह बुलंद भी नहीं आउंदी, उच्ची भी नहीं आउंदी। बड़ी दिल दी गहराइयां चों अल्लाह हो निकल रहा सी, बाहर बड़ियां दे हिरदियां नूं धूप पैंदी सी। औरंगजेब कहिंदा इत्थे कौन रहिंदा है, शिकार खेड के वापस आ रहा सी नाल अहलकार सिपाही, हाथ जोड़ के अहलकार ने कहा जहां पना इत्थे उही नगन फकीर नंगा रहण वाला पागल सरमद ओ है, ईरानी फकीर ईरान तो आया सी, घोड़े तो उतरिया, धूप पई खिच पई, दिल दी गहराई चो निकले धुन ते मुतासर ना करे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चारों पासे वाड़ सी, अहलकारा ने वाड़ नो एक पासे कीता, जैसे औरंगजेब अंदर दाखिल होया एक कुत्ता सी बड़ा भारी, ते खून खार जिया टुट के पै गया औरंगजेब, लिबास फाड़ दिता, अहलकारा सिपाहियां ने बचाया,
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਮਸਤੀ ਚ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ? ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨਾ ਬਾਇਤ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਖੂਨਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨ ਆਵਾਇਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਬਾਇਦ ਤਾਂ ਸਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਆਇਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1947 ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਉਲਮਾ ਵਾ ਉਕਰਾਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਉਲਮਾ ਵਾ ਅਕਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਮਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਾ ਕਤਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਾ ਕਤਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਰਮਦ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੋ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸਵਾਮੀ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਮੁਥਾਜ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਇਸ ਬਣੀ। ਆਪ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਈ 2.5 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਭਟਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੈਸੇ, ਕਵੀ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸੇ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਇਦਾਦ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ,
सच दे पक्ष दे खड़े हो गए ना, जान भी जाती है, जावे असी जान निशावर करते हैं। इस वास्ते भारत दे सिख जगत शहीदां दा सरताज कहिंदी है। ये शहीदां दे सरताज ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप कहिंदे ने मैं सारियां नूं मित्र बना लिया, कोई मैनूं दुश्मन समझदा ते समझे, सब मेरे मित्र ने, सारा जहान मेरा अपना है, सबको अमीत हम अपने की ना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जिथे हरिमंदर साहब दी आपने तामीर कराई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी संपादना भी उन्होंने की थी। और इस तो इलावा जिहड़ा महान कम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, जगह जगह धर्मशाले बनाने, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाने, भाई गुरदास नूं तदे ही कहना पिया, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, हर घर गुरुद्वारा बने। असी ते पिट उठदे हां कि दो गुरुद्वारे तीन गुरुद्वारे भी बन जांदे दिल तंग हो जांदा, टकराओ लड़ो झगड़ो, बंदे ते बंदे नाल झगड़दे ने, गुरुद्वारे भी गुरुद्वारे नाल झगड़दे ने। घर घर अंदर धर्मशाल, हर घर गुरुद्वारा होवे, हर घर धर्मशाल होवे, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। इतनी मैं अर्ज कर दें, तंग दिल मनुख मनुख ते की ओ कुछ भी नहीं है, उन्हों सिख कहना ते बनदा ही नहीं है। तंग दिल मनुख सिख नहीं हो सकता, सिख ते इतना विशाल होवे, मुरली दी तान भी गूंजे, मस्जिद दी अजान भी गूंजे, पर सिख इतना तंग दिल होवे ये बाणी भी ना बर्दाश्त कर सके, इन्नी तंग दिली आ जाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे हिरदे नूं वेखना पएगा, इतना विशाल जिगरा, महान मंदिर बनाना है, नहीं एक मुसलमान रखे, पत्थर मुसलमान रखे, मियां अमीर ने पत्थर रखे, ये नहीं सोचिया सिख रखे। जिहड़ा वाकई सिख धर्म नूं मनदा है, पूर्ण तौर ते मनदा है, ते जिसका नाम भी उस ढंग दा होवे, ओ पत्थर रखे, नहीं मियां अमीर उस तो नहीं पत्थर रखवाया। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरुपुरब तो लेके दिवाली तक। 40-42 साल विच मेरा कदी नागा नहीं पाया, मैं हर साल उत्थे ही होना। साईं मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आउंदे ने, हर साल मिलते ने, मैनू मिलते ने, और आके कहंदे ने मस्कीन जी सानू माण है, असी उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकन वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बुजुर्गां ने रखी सी, साईं मियां मीर ने रखी सी, माण करदे ने, वो माण करदे ने, हैन मुसलमान दाड़ियां रखी होईयां, नमाज पढ़दे ने। और गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब दे दिनां च आउंदे ने, उहनां दिनां च आउंदे ने, अक्तूबर दे महीने च उह वी आउंदे ने, मत्था टेकदे ने। तो रूहे जमीन ते सांझी वालता दा इस तरह दा केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया, आप दी इतिहास तो ते आप दे बोलां तो शिक्षा की मिलती है। ओ महान है मनुख जो सच दी खातर कुर्बानी देवे, उसका धन महान है जो सच वासे धन खर्च करे, धन खर्च करदा है, लेकिन वो सब तो सिरमौर है जो सच दी खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा, कुर्बान कीते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होंदा। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, सच दी नहीं आउंदी, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते जित आउंदी है, वक्ती तौर ते झूठी कह कई जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास, सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू, जित ते हो गई वक्ती तौर ते, 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते कंस दी जित है, उन्हें देवकी ते वासदेव नू जेल दे छपाया, 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने, 7वें कृष्ण का जन्म होया है।
ਰਾਜ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਸੌਦਾ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਲਣ ਸੀ, ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਪਾਲਦਾ, ਗੁਆਲਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਾਸਦੇਵ ਨੇ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪਲਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਝੂਠ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੋਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਈਸਾ ਝੂਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कि जिहड़ी करूपता है ना इसे ही स्वपन दे चों निकलेगी, ये जो कबर है इसे ही जिंदगी दी बनेगी। मैनू चंगी तरह याद है ढाह निकल गई उस दे मूह चो और मेरे हिरदे ने तस्लीम किया, निरा पखंडी ने गल नू पकड़न वाला समझण वाला भी है, कोरा हंकारी ने। कहन लगा गुरु नानक ने जो कुछ आख्या सही है, गुरु नानक दे संबंधित जो मैं शब्द आके मैं वापस लेना कि ठीक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख व्यापक है, मूर्ख दा दुखी होना कुदरती है, सियाणा भी दुखी है। निर्धन दा दुखी होना कुदरती है, धनवान भी दुखी है। बल्कि मनोचिंतक ते कहंदे ने निर्धन देश इतने दुखी नहीं जितने धनवान देश दुखी ने, निर्धन मनुख इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं क्योंकि मूर्खता दा जो है करके उसनू दुख दा इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख ते व्यापक है, कमजोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलां नू वेख के कहिंदे ने दरख्त दी पहचान आउंदी है, फलां तो पहचान आउंदी है, बोया की सी। बीज दी पहचान किस तों होवेगी? फल तों। कड़वे फलां नू वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज देच वृक्ष वेखण देच और बीज देच फल वेखण देच, ऐसिया खुरदबीना तैयार हो गई ने। साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुलां दा ए रंग होवेगा, फल इतने आकार दा होवेगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज देच फल वेखण दे सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञानक, कर्मा देच फल वेखण दे सफल होया है संत भगत। उन्हों दिस पिया कर्मा दे बीज देच इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा, उहदे कोल अपनी दृष्टि। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की थी बीज चंगे वधिया बनाइए, तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलां दी फसल है, फुलां दी फसल है, और बहुतात देच है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी दी तो शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन देच साइंस दा बहुत वड्डा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज देच फल वेखण देच, संत सफल होया कर्म देच फल वेखण देच। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है, अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने, मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। ते हुण संस्कार भी शुरू शुरू च मां बाप देंदे ने, बोलना सोचना ये पहले पहले तो मां बाप तो ही मिलता है जो है मनुखी बच्चे ना।
तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे सोग ते चिंता लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मां बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वह दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया किया सी इस जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर नू कि दुनिया में इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया में रोगी ही रोगी होंगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगों लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगों लई ते शरीरक रोगों लई मां बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानों ते, और मां बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कॉर्न मार्कुस ने एक होर चोट कर दी, तेरी आर्थिक औकड़ा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। हुण मेरिया आर्थिक जो है कमजोरिया ते दुखां लई समाज जिम्मेवार है, मेरे शरीरक रोगों लई मेरे मानसिक संताप लई मां बाप जिम्मेवार ने। मैं तो सुतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं, फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष मां बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी च फ्राइड के ख्यालों नूं लईए, कार्ल मार्कस के ख्यालों नूं लईए, साहब कहिंदे मां बाप दोषी नहीं ने, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है। दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई मां बाप दोषी नहीं है, कोई समाज दोषी नहीं, तेरे दुखा लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखा लई तू जिम्मेवार है, ना मां बाप ना समाज। तू किसे नू जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसे ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगों लई, तेरिया आर्थिक औकड़ा लई तू जिम्मेवार है, ना समाज जिम्मेवार और ना ही मां बाप जिम्मेवार। तू स्वयं दद्दा दोष ना काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है, और ये बीज तेनों परमात्मा ने खुले रूप दे दिते, अदृश्य रूप रसना तेरे कोले, तेरी मर्जी है। तू सच दे बीज बो भावें झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावें कुड़त्तन दे, हाथ तेरे कोल ने भावें गलत कर भावें ठीक कर, पैर तेरे कोल ने भावें गलत पासे जा भावें सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है, और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान होई, ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक मानसिक वाचक। जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा मानसिक कर्म, जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा वाचक कर्म, जो मैं हथां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा शरीरक कर्म। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तों उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसे नूं भी दोषी ठहराण दी लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं आउणगे। कर्म ही ते बीज सन। ते मैं फिर अर्ज करा, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट देख सकता है, आज भी देख सकता है, ये बीज ठीक नहीं ने, इहदे चो फल ठीक नहीं निकलेगा, इहदे चो फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे दुख सुख का फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने,
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛੈਂਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸੇ ਬੀਚ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਦ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 150 ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 150 ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7:45 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨ ਦੇਉ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अंदर मध्य भारत देखे सनातन मध्य कोई हिंदू सन अगर चलाना कर जाता है देही छड़ जाता है उन्हें जल प्रवाह कर दें दाह संस्कार नहीं करते जल प्रवाह कर दें पर जब जल प्रवाह कर दें तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं क्यों लाश तैरन लग पैंदी हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है वजन बढ़ जाता है लेकिन तैरती है हैरानगी है जिंदा डुबदे ने मुर्दे तैरदे पानी दा मनुख नाल भी वैर नहीं अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए से मुर्दा तो नहीं डुबदा जीवदा मनुख क्यों डुबदा है ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है तवाजन खो बैठता है संतुलन गवा बैठता है ता डुबदा है लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है सीमा तो वधी हुई वासना इदा संतुलन डावाडोल कर दे डुब जाता है हम दे खाते डुबे आए इधर डुब गए डुबे की पहचान की होगी उदा नितनेम डुब गया होगा नहीं करता होगा रहत वैद डुब गई होगी अमृत वेला डुब गया होगा गुरु भक्ति डुब गई होगी सील संयम डुब गया होगा दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी हम देखते डुबे महाराज कहते मैं ते देखना डुबे हुए दुनिया डुबी हुई है गर्क हुई है डुबे की पहचान की है उदे कोल नितनेम नहीं होगा अमृत वेला नहीं होगा जप तप नहीं होगा शील संजम नहीं होगा दैवी गुण नहीं होंगे डुबे होगा गर्क होया होगा कदी कदाई कोई कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है डुबदा नहीं उसे असी कहने निर्लेप है कमल की तरह पानी वधदा है कमल होर उपर उठता है धन घर दे च वध रहा है डुबदा नहीं पिया प्रभता वध रही है डुबदा नहीं पिया नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने कोई रूप रंग दे डुबे हुए हम दे खांते हैं डुबे महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई है धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा है परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा है ये गुणा तो पता चलता है इत्थे जानना है सारी रोशनी सूरज दी है सारे गुण परमात्मा देने सब गुण तेरे मैं ना ही को विण गुण कीते भगत न हो मेरे घर दे चानना है पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते अगर हृदय दे गुण आ जान गुण परमात्मा देने ठीक है गुण रोशनी ने औगुण अंधेरा है जितने अवगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा अंधेरा होगा जितना गुण होंगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होवेगा तो मैं फिर दोहरावां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया तो चलदी की है सुरत चलदी है तुसी चल के आ गए शरीर चल के आ गया पैर चल के आ गए ने इहदे नाल हाजरी असी भरी है असी गुरु की हजूरी च नहीं गए गुरु की हजूरी च सुरत जांदी है शब्द नाल सुरत जुड़ेगी हाथ पैर नहीं जुड़ते इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है गुरु दी हजूरी विच चले जाना होर गल है अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन गुरु दी हाजरी पे भर देने एक दो बंदे आउणगे जिन्हां नूं गुरु दी हजूरी नसीब होगी कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी हाजर गैर हाजर गैर

तेरे, हर विसरत तेरे, बाबे सावन मल दे गुण गल गए, अंदर दा सुकून खत्म हो गया। साध संगत ओ सारियां बख्शिशां गुरु अमरदास महाराज ने जिन्हों लोग कदे गंगू कहिंदे सी धन बाबा गंगदास विच भर दित्तियां। बाबे गंगदास नूं बचन कहे, जा गंगदास जिधर नूं तेरा मुख है चला जा, जिधर जाएगा दुनिया तेरे चरणा च नमस्कार करेगी, तेरी जबान तो गुरु का शब्द सुन के लोगों का लोक ते परलोक सवरेगा। ऐसी मस्ती आई साध संगत, कदे आ पहाड़ दियां कंधरां कन्नियां विच लुक के बह गए बाबा गंगदास, कहन लगे मैं ते कुछ भी नहीं सी, मैनू इन्नियां बख्शिशां कर। अज साध संगत किन्ने आसान किन्नी वड्डी गद्दी उन्हां दे नाम ते चलदी है। बाबा शीतल दास जी जिहड़े बाबा जवाहर दास होए वह भी विच्चों ये सारी गद्दी उन्हां दी है। पाकिस्तान तो इत्थों लैके पाकिस्तान गुजरांवाले तक खटखड़ तक उत्थे बाबा जी की यह सेवा सिखी प्रचार चलता रहा गद्दी का। और ये तुहाडे ध्यान विच होएगा जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड होई, शहीद भगत सिंह दे जिहड़े बजुर्ग सी उन्हां दे बजुर्गां ने ये बाबा गंगदास की गद्दी दे अगे बाबा जवाहर सिंह जी का झंडा लैके इधर आए। अज जिहड़ा खटकड़ां दे लागे वह झंडा जिथे गड्डिया उत्थे पिंड खटकड़ कलां भी वसे है, और उत्थे वह गुरद्वारे का नाम भी झंडा जी, अज वह गुरद्वारे का नाम भी झंडा जी। ये झंडे किन्हां दे रहिंदे ने, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल उन्हां दे हुंदे ने जिन्हां ने नाम जपे, जिन्हां ने सेवा कमाई है। बाकी दुनिया के ध्वज तो बिन सजांदे ने, लाल किले ते किन्ने राजियां दे झंडे झुल गए, ना राजे रहे ना झंडे रहे। साध संगत कदे इत्थे बाबर ने आके झंडा चलाया, कदे मुहम्मद शाह रंगीले का झंडा रहा, कदे लोधियां का राज रहा, कदे नादर शाह का राज रहा, कदे अंग्रेजां दे झंडे झुलदे रहे। इत्थे राज दे झंडियां वालियां दे झंडे मुक गए, बंदगी वालियां दे झंडे अज भी गुरद्वारा झंडा साहब बन के झूलदे। खैर बाबा गंगदास साहब इस धरती ते आ गए, उधर बाबे सावन मल का सुकून खत्म हो गया। जदों अंदर का सुकून ना ना रवे, जिन्हें आनंद माणिया होवे उहदे कोलों आनंद वापस लै लिया जाए, इस तों वड्डा दुनिया च होर कोई दुख नहीं है। साध संगत तुसीं प्यार वाले बैठे हो, दुनियावी तौर पर जिहदे नाल प्यार होवे ना, जे उह बुलाणों हट जाए चार दिन, अपने दिल तो पुछया जानी है की बनता है। जिहदे नाल प्यार होवे उह बुलाणों हट जाए तां सज्जणों अंदरों मन फिर दुखी हुंदा है। ये चित्त विच तुहाडे ध्यान च रहेगा, दुख विच कोई अपना आके नाल बह जाए दुख सुख बन जांदा है। सुख विच सैकड़े हजारां लोक होण, सुख विच कोई अपना नाल ना होवे सुख भी दुख लगदा है। तुहाडा परिवारक तौर पर तजर्बा रहना, दुख विच कोई अपना आके नाल बह जाए तुहानू दुख भी सुख लगता, हौसला आ जांदा है। ते तुहाडे सुख विच हजारां लोक पहुंचे होण पर तुहाडा अपना कोई सका ना पहुंचया होवे, तुहानू सुख भी दुख नज़र आउंदा है। अज श्री गुरु अमरदास महाराज तो दूर हो गए, बाबे सावन मल दे दिल नूं खिच पै गई। फिर मन च आया वो मना, हुण तां रुमाल विच भी कुछ नहीं रहा, सारा कुछ लै लिया। हुण अंदरों मन ने कहा तू धोखा कीता गुरु नाल, तू गुरु नाल बेईमानी कीती है, तू गुरु दे हुक्म अदुली कीती है, तैनू गुरु अमरदास महाराज ने सद्या सी तू गया नहीं, तू राज भाग सुखां दा लालच कर लिया, हुण पछतावा कीता मन च। वड्डे तो वड्डा अपराध बख्शिया जांदा जदों कोई पछतावा कर लै, वड्डे तो वड्डा। बाबे सावन मल ने पछतावा किया, हरिपुर के राजे नूं कहा मैं गुरु नहीं, गुरु धन गुरु अमरदास है, मेरे को रुमाल का टुकड़ा है पर इस रुमाल विच बख्शिशां गुरु अमरदास दियां ने, तेरे पुत नूं जिउंदा करन दा नां मेरा लगा है पर पिछे करामात धन गुरु अमरदास साहब दी है, मैं कुछ नहीं। हुण सच बोलिया, हाथ जोड़ के कहा चलो मैं तुहानू अपने गुरु को लै जा, राजन तुहाडा भी लोक परलोक सवर जाएगा, मेरा भी सवर जाएगा, नहीं तो मैं तो गुरु तो बेमुख होकर नरकां च पैना ही पैना है,
मेरे मगर लग के तुसीं भी डुब जाओगे, क्योंकि गुरु जिन्हों का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन। अज सच बोल के कहा मैं गुरु नहीं, गुरु गुरु अमरदास है। हरिपुर का राजा तैयार होया, राजे ने अपनियां राणियां नूं तैयार किया, रथ तैयार किते, कुछ सुगतां कुछ दुशल्ले कीमती लए। इस पहाड़ी हरिपुर रियासत हिमाचल तो चल के श्री गोइंदवाल साहब पहुंचे। जदों धन गुरु अमरदास महाराज के सामने होया, शर्म नाल बाबे सावन मल दी अखां चुक गईआं। श्री गुरु अमरदास महाराज के मोहरे मत्था टेकन लगे, अखां चुक गईआं। राजे ने मत्था टेकिया, राणी ने टेकिया, बाबा सावन मल सब तो पिछे बह गया, क्योंकि जदों बंदे दे मन च चोर होवे उह पिछे नूं पैर जांदा है। पर एक गल याद रखियो, सिख बेमुख हो सकदा है, गुरु कदे बेमुख नहीं हुंदा। सिख विदावा दे सकदा है, गुरु कदे विदावा नहीं दिंदा, मैं तेरा गुरु नहीं। जदों बाबा सावन मल पिछे बह के रोण लग पिया, धन गुरु अमरदास महाराज दया चाहे आवाज दे के कहा, सावन मल रोंदा क्यों है, तू उठ के आ। गलतियां सिखां कोलों हुंदियां ने ते गुरु बख्शिंद हुंदा है। गलती चेले कोलों हुंदी है, गुरु बख्शिंद हुंदा है। धन गुरु अमरदास महाराज ने आप प्यार नाल बुलाया, रोंदिया रोंदिया सावन मल चरणा च जाके डिग पिया, लम्मे पैके डंडौत करके कहा, पातशाह मैं गुरु बन के बह गया सी, मेरे तो बहुत वड्डी भुल होई है, तुहाडियां बख्शिशां करके मेरे मन च माण आ गया, पातशाह मैनू बख्श दिओ। श्री गुरु अमरदास महाराज वेखो किन्ने बख्शिंद ने, निमाणियां दे माण ने, ताणियां दे ताण ने, ओटियां दी ओट ने, गत्तियां दी गत्त ने, थामियां दी था। गुरु अमरदास महाराज ने चरणा च लम्मे पए बाबे सावन मल नूं बाहों फड़ के उठाया ते प्यार दे के गल नाल ला के कहा, प्यो ओइयो हुंदा जिहड़ा बच्चियां दी भुल बख्श दिंदा, जा सावन मल तेरी भुल बख्शी, जा सावन मल तों बख्शिया गया, जा सावन मल जिहड़ी संगत तू नाल लैके आया संगत बख्शी गई, जा सावन मल तू भी बख्शिया गया, तेरी संगत करन वाले भी बख्शे गए। रही गल दुनिया की वड्याई दी, कदे गुरु नाल धोखा नहीं करीदा। गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै, जिन्ना माण वड्याई सानू मिलदी है, सावन मल तैनू भी वड्याई मिलेगी, पर कदे माण ना करी। जा तेरे लोक की जिम्मेवारी भी साड़ी, परलोक की जिम्मेवारी भी साड़ी। पातशाह ने बख्शिया, द्वारा हरिपुर रियासत च घल्लिया, किया सिखी का प्रचार करी, साडे वांग तेरा माण सत्कार वड्याई होएगी। सावन मल तेरा दुनिया ते नाम रहेगा, लोक परलोक सफल होएगा, जेड़ा तेरी संगत करेगा उहदा पार उतारा होएगा। पर शर्त एक है, गुरु नानक दे चरणा तो दूर ना जाई। अज बाबे सावन मल की गद्दी भी पूजी जाती है, बाबे गंगदास की गद्दी भी लोग पूजते ने। साध संगत, जे आपां फिर गुरु अमरदास महाराज के चरणा ना जुड़िए तो अपना लोक ते परलोक सुहेला ते सफल हो जाएगा। साडा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, असी गुरु के मुताबिक चलन लग पईए, जे सिख्या कुछ नहीं फिर व्यर्थ है आना। शरीर करके आए हैं, मकसद पता होना चाहिए। इसलिए समागम का नाम गुरम समागम होंदे, इत्थे आपां गुरु की मत सीखण आए हैं। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, सीखना की है। दो चीज़ां गुरमत विच बहुत इंपोर्टेंस रखदियां ने, महानता रखदियां ने, महत्व रखदियां ने, एक सेवा दूजा सिमरन। जां तां इत्थे सेवा हो रही है, कोई लंगर बना रहा है, कोई छका रहा है, कोई पार्किंग लवा रहा, सेवा है। जां फिर पंडाल विच दीवान विच बह के आपां सिमरन करना, तीजा होर कोई काम नहीं है। इत्थे गुरु कोल बहना है, इत्थे जाच सीखनी है, सेवा किवें करनी है, जाच सीखनी है, सिमरन किवें करना है। क्यों? अपनी मत नाल कीती हुई सेवा व्यर्थ हुंदी है। अपनी अकल नाल मैं कहां मैं सेवा बहुत करदा, दान बहुत कीता, मैं सिमरन करदा, वह व्यर्थ हो जाएगा। क्यों?
अपनी मत नाल दिता हुआ दान बंदा हंकारी हो जाता, मैं दान दिता है। आज जो लिस्ट पढ़ी जाती ना नावों की, सत्संग कथा कीर्तन वल ध्यान होवे ना होवे, साढ़े पिंडा का माहौल है। जदों सैकटरी साहब उठ के माया बोलते ना, फलाने बंदे बोलो इन्नी, फलाने बोलो इन्नी, उदों सारे बंदे ध्यान नाल सुनते, मेरा 500 बोले, साड़ी खंड की बोरी बोली है, मैं देसी घ्यो का टीम दिता है, वह बोले है। जे वो नाम ना बोलिया जाए तो लोग इतों तक भी कहते हैं खा गए हो, खा गए हो, चोर है, साडा नाम नहीं बोलिया। इतने अपन नाम सुन नहीं आए, क्योंकि जे दान करके हंकार पैदा हो गया दान व्यर्थ हो जाएगा। 500 बंदे विच नाम तो बोल दिता जाएगा, पर सात संगत वो दान दिता व्यर्थ हो सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान है, तुसी हुणे भोग विच श्लोकां सुनिया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, जिमें हाथी नदी विच नहा के चिक्कड़ उपर पा ले, उहदा इशनान कीता व्यर्थ है। ऐदां दान करके कोई माण कर ले, उहदा दान दिता व्यर्थ है। दान करके कोई हंकार करे, उहदा दान दिता व्यर्थ है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने वचन कहे, पातशाह कहिंदे तीर्थ वरते अर दान कर, तीन चीज़ां करके तीर्थां ते आए, दान दिता, कोई चंगा वर्त रख्या। वो वर्त का अर्थ है, अज बहुत बंदे तुहाडे च ऐसे होणगे जिहड़े शराब पीण वाले ने, पर तुसी गुरद्वारे आए हो, अज वर्त रख के आए, अज खाणा पीणा नहीं भी कुछ, अज नहा के जाणा है, अज गुरु दे घर च इन्ना कु वर्त रखे है, पर व्यर्थ जे मन च माण आ जाए। पढ़ो, सहिब कहिंदे तीर्थ वरते अर दान करै,

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखों का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है के मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर

0: करना सर्व रजाय।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: पाने कड़ लेकना माया विच निवा

0: ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਸੋਗ। ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਸੋਗ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੋ ਸੋਗ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮਨ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕੋਈ ਖੇਲ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਚ ਬੈਠੋ, ਖੇਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੋਗ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੋਵਨ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੋਵਨ, ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है, मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे च बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां दे च नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है, इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने, पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करण विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी लिया है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहा है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाट कितना गहरा है ए चौड़ी कितनी है ए गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनु उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है तृष्णालु है ए तृष्णालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन दे उत्ते वगदियां होईयां नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इहदा पाट किन्ना चौड़ा है एक गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है ना गहराई नाप दे चाहुंदी है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर देता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखिया है और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकदे या दावे नाल नहीं कह सकदे इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं एक भी नहीं होया गजब दी गल इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां होईयां ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तों वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन देच पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती देच पक्की जिंदगी किसनु मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: रेडियो स्टेशन 1550 AM गुरबाणी सैगमेंट तुहाडे तक। स्वर्गवासी सरदार अजीत सिंह दी बाद स्वर्गवासी माता सुरिंदर कौर बाद दी याद दे विच 1550 AM तों गुरबाणी प्रचार कीता जांदा है। 1550 रेडियो दे उत्ते गुरबाणी दे किसे भी प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: ਪਾਉਂਡ ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 58 ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ।
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

गुरमता जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां दी फिक्र करो, दोहे पासे दी फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया, मन भी उसका दिता होया, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर दी भी फिक्र करो, अंदर दी भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन दी परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बार मुखी हो जा, फिर अंतर मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जांदा है अंदर जांदा है, लेकिन गुरमत का भी यह संदेश, गुरु नानक देव जी की यह गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष की गल नूं पूर्ण तौर पर समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बार मुखी रहिंदे ने, अंदर दी फिक्र नहीं करदे। हुण विद्वान इंज कहिंदे ने, बाहर दी यात्रा हंकार दी यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर दी सारी यात्रा हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी यात्रा है। एक हंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। हंकारी मनुख, प्रबल हंकारी मनुख एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वह समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम दो तीन साल दे बच्चे दे सामने मनुख अपने हंकार नू प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वह समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, उहदे सामने भी हंकार नहीं चलता, उत्थे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नू समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नू समझदा है पर उत्थे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटिया नू लब्बेगा, छोटिया नू, उत्थे उसकी तृप्ति आउंदी है, या वध तो वध दूसरिया नू छोटा मनेगा, मनेगा, हर पक तो छोटा समझेगा, मनेगा। उदी हंकार दी तृप्ति इसे दी, बार दी यात्रा हंकार दी यात्रा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार की खातर करता है, कदी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहिंदे ने, मेरिया भी अखा ने, संसार दियां भी अखा ने, 90% कम ते मैं लोकां दी अखा वास्ते करदा, अपनी अखा वास्ते ना। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ये चाहता है, नौ खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावा। महाराज कहिंदे नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोय, सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मनन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जान देवन। सारा संसार जानदा होवे ते सारा संसार झुके भी, हंकार दी ये मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी त्रिपत नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा,
जे ये धन विच अगे होवेगा ते कोई सेहत विच तंदुरुस्ती च अगे होवेगा ते जे तंदुरुस्ती विच अगे है ये कला विच ज्ञान विच पिछे पिछे होवेगा कोई इस तो अगे होवेगा ते जे ये कला ते ज्ञान विच अगे ते कोई स्वप्न विच इस तो अगे होवेगा सुंदरता विच इस तो अगे होवेगा किसी ना किसी पक्ष विच हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू दे च अगे नहीं हो सकता। आज तक कोई इस तरह दा मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू दे च अगे होवे। ये भी मैं अर्ज कर दें किसे ना किसे च पछड़े आया होवेगा। कला दे च अगे होवेगा, शरीरक बल दे च पछड़े आया होवेगा, तंदुरुस्ती दे च पछड़िया होवेगा, स्वप्न दे च पछड़िया होवेगा, ताकत बाहु बल राजनीति दे च या धन संपदा दे च पछड़िया होवेगा। हर पक्ष दे च मनुख अगे नहीं होंदा। हंकार हर पक्ष दे च अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगती है उसनों जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे होवे। हंकारी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे दे सामने मनुख दा हंकार नहीं चलता क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार के अंदर। समर्थ शक्तिशाली दे सामने भी हंकार नहीं चलता क्योंकि मनदा नहीं है, उत्थे हंकार चलता नहीं। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नूं लब्बेगा या दूसरियां नूं छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा, विनम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नेमी नानका गुण चंगे आईयां तत्, विनम्रता सारे गुणा दा निचोड़ है। गुरु नानक इंज कहते जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणा दा तत् है कि विनम्रता निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईयां तत्। एक आलम इंज कहिंदा है, जुबां खोलेंगे मुझ पर बद जुबां क्या बदशुवारी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाक सार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे। मैं ते खुद ही पछड़े आया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सगल चरण की एहो मन राला। हे प्रभु मैं ते सारिया दे चरणा दी खाक, सारिया दे चरणा दी थोड़। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है, ते लंगर आग दा पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु थे कहंदे ने, बदबख्त हमचों बखील गाफल, बेनजर बेबाक। हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रालब्ध चंगी नहीं है। क्यों तू नहीं मिलिया? किया होया जे बहुत कुछ मिलिया, तू नहीं मिलिया। बद वक्त हम चों बखील, चुगल खोर भी हैं, निंदा भी कर दा। हंकारी मनुख नु निंदा दे च रस मिलदा है। जिनू उंज छोटा नहीं कर सकदा, निंदा नाल छोटा करन दी कोशिश करदा है। निंदा की आउंदी है? गल नू घटा के बयान करना, खुशामद की यह गल नू वधा के बयान करना। दोवें झूठ ने, दोहां नाल मन मैला हुंदा है, दोहां नाल मनुख परमात्मा तो दूर हुंदा है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे,
खोजे पद निर्वाना, पर जन नानक एव खेल कठन है कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे, या मनुख घटा के गल करदा है या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है तो मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नू कंडा कह देना ये निंदा है, गल घटा के बयान की गई है। पर कंडे नू फुल कह देना ये खुशामद है, गल वधा के बयान की गई है। इन्हां दोहां नाल मन मैला हुंदा है। फुल नू भावें कंडा कहिए भावें कंडे नू फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप मैं थोड़े सामने रखते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहन लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उना नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नु भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान किया है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं आ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नू चुन सकदा है, मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नू मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होगी। अर्जुन आया चरना ते मथा टेकया, श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया, दुर्योधन ने मंग की थी सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी थानू ही मंगना सी, थोड़ी सेना नू नहीं मंगना सी, तुसी मेरे पक्ष दे च खड़े हो गए तो फिर हार भी थोड़ी जित भी थोड़ी, अपना ते कुछ भी नहीं निश्चिंत, असी ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार दे इतिहास दे च इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी दी सेना दुर्योधन दे पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडुआं दे पक्ष अर्जुन दे पक्ष च खड़े हैं। इस तरह दा फैसला कोई निरपक्ष मनुख कर सकता है, जो निरपक्ष है, जिन्हों लग लपेट नहीं है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे च औरंगजेब दे कुछ गुण भी लिखे ने, हैरानगी है मैनू, जेदे हुक्म दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद किए गए
ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਫਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਸੁਭਾ ਕੇ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਹੋ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਭਾਅ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ, ਔਰ ਮਣਕਾ ਫੇਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੂੰ ਪੂਰੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ, ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਇਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖੇ ਤੇ ਚੁਬੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਾਮਨ ਚੀਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਤਨੇ ਗੁਣਾਂ

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट